आवाज की दुनिया के दोस्तों, महक के दोस्तों, सुखदेव जसवाल का आपको सादर नमस्कार। कार्यक्रम में आपका आदर है, अभिनंदन है। घर में अगर बच्चों की चहक हो और अच्छा संगीत हो तो घर में खुशियों की महक फैल जाती है। ऐसी महक फैलाता है आपका अपना कार्यक्रम महक। अच्छे मनोरंजन की कोशिश का वादा लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूं, सुखदेव जसवाल।

दिवंगत प्लेबैक सिंगर आशा भोसले जी को आज हम महक कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देंगे। और हिंदी फिल्मी दुनिया के रचयिता, फादर ऑफ हिंदी फिल्मी, हिंदी फिल्म्स और बॉलीवुड जिसे कहते हैं, दादा साहेब फाल्के, उनको हम आज कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देंगे। कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा ऑनलाइन सुन सकते हैं, RRR.org.au पे जाके लिसन ऑनलाइन में प्ले बटन दबा के। अपने मोबाइल पर भी इसी तरह से सुन सकते हैं या फिर एक मुफ्त ऐप कम्युनिटी रेडियो प्लस। कम्युनिटी रेडियो प्लस ऐप डाउनलोड करके अपने फेवरेट ऐप स्टोर से अपने मोबाइल के साथ आप जहां भी हो सुन सकते हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम महक। आज है 3 मई और 3 मई होती है वर्ल्ड लाफ्टर डे। आज आप ना भी आप खुश हो, आपको हंसने का कोई कारण ना भी हो, तो भी हंस दीजिए, क्योंकि आज है वर्ल्ड लाफ्टर डे। और कहते हैं कि आप अगर जबरदस्ती भी हंसते हैं तो आपका शरीर, आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है, तो हंसिए जोर से।

8 सितंबर 1933 को जन्म हुआ आशा भोंसले जी का, और 12 अप्रैल 2026 को वो हमें छोड़कर स्वर्ग सिधार गई 92 वर्ष की आयु में, 92 ईयर्स की एज में। आज का कार्यक्रम श्रद्धांजलि है आशा भोंसले जी को। आशा भोंसले जी जिन्होंने 1940 के दशक में कदम रखा हिंदी फिल्मी दुनिया के पार्श्व गीतों के की दुनिया में, और उसी समय कदम रखा हिंदी फिल्में के प्लेबैक सिंगिंग में उनकी बहन लता मंगेशकर जी ने। लता और आशा जी एक ही समय में इस दुनिया में आए, प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में, और 1950 तक लता जी ने अपनी जगह बना ली थी। आशा जी ने ये 10 साल जद्दोजहद में बिताए। काम कम मिलता था, वो बच्चों के गानों की आवाज़ बनी, और क्या आवाज़ बनी। आपको याद होगा फिल्म, ये बहुत ही प्यारा गाना, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है।

आशा जी का कोई गाना सुनने के लिए, फरमाइश करने के लिए, स्टूडियो का नंबर है 9816-2777, 9816-2777, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी पसंद आप तक लाने की।

बच्चों के आवाज बनकर आशा भोसले जी ने वो जगह बनाई जो शायद आज तक भी कोई नहीं बना सका है, और उन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए जो मिसाल बन गए बच्चों के गानों में, जैसे कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए। आप जानते ही हैं ये बचपन में हमने खूब सुना, तो एक बार फिर क्यों ना इसे सुना जाए।

और ये बच्चों की आवाज ऐसी बनी कि उनको अपना पहला करियर का फिल्म फेयर अवार्ड भी बच्चों से संबंध रखने वाले एक गाने के लिए ही मिला। फिल्म थी 10 लाख और फिल्म 10 लाख में आशा भोंसले जी की आवाज ने ऐसा जादू चलाया कि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और गाना था गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा।

और आशा भोसले जी की आवाज ने बच्चों को देश प्रेम भी सिखाया, देश प्रेम सिखाया उन्होंने इस प्यारे से गाने में, जिसमें गांधी जी के योगदान की बात है और आज़ादी की लड़ाई की बात है।

0: और समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 2:22 और अब समय है संदेशों का। कहीं जाइएगा नहीं, संदेशों के बाद जारी रहेगा आशा भोसले जी को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम महक 2RRR 88.5 FM पर 4 तक। और अब बहुत ही अच्छा समय है अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाने का। नंबर है स्टूडियो का 02981 6 2777।
1: Hi, I'm Rod Pitterino, licensee of the Bayview Hotel in Gladesville. Come and experience one of Sydney's finest dining bistros with an extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music 3 nights a week.
2: 2RRR sponsor the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be.
3: The bats are about and you can be too. Come and celebrate Bat Night with a bat count at Tarpon Creek, organised by Sydney Wildlife. Its aim is to track the health of a local grey-headed flying fox population, which is an endangered species. It's all happening on Saturday the 23rd of May, with the bat count taking place between 4:30 and 6 p.m. Registration is essential. For more details, email Hunters Hill Council's Bushland Management Officer, Jackie Vollmer, on VOLLMERJ at huntershill.nsw.gov.au.
4: Don't you just love live radio?
5: Accidentally. Accidentally. Accidentally, Curly's Treat. Friday evenings, 9 to 11pm on 2RRR, hashtag live on 88.5.
6: Think Vivid Sydney's One Big Light Show? It's time to think again. They've got musicians performing at legendary landmarks, creative visionaries and thought leaders tackling our biggest questions, and chefs cooking up unbelievable flavors. Go beyond at Vivid Sydney from May 22nd to June 13th. Plan your trip today at vividsydney.com.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है महक 2RRR 88.5 FM पर। आज आशा भोसले जी को श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में अगला गाना बताने से पहले जरूरी है कि राज कपूर साहब ने फिल्म बनाई श्री 420, उसमें नादिरा जी का एक खास रोल था और नादिरा जी पर एक गाना फिल्माया गया और ये गाना था मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के ना, जो सुपरहिट रहा और रहता भी क्यों ना, आशा भोसले जी की आवाज़ थी उसमें। इसी जॉनर से, टोन से, रिदम से, शब्दों की जगह केवल आवाज़ के प्रयोग से, खुले गले से गाने से, बेहिचक गाए गानों से प्रख्यात हो गई आशा भोसले जी।

और फिर आई वो फिल्म जिसमें आशा जी का ये गाना अमर बन गया। आज भी हावड़ा ब्रिज का ये गाना कोई भी सुनने को तैयार है। जी हाँ, ऐसा था ये गाना, है ये गाना, था नहीं है, और इसे सुनते ही आप भी यादों में खो जाएंगे।

और इस गाने के बाद जो गाना आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आशा भोसले जी की आवाज में, उस गाने को जब आप सुनेंगे तो आप समझ ही जाएंगे कि मैंने ये गाना क्यों आपके लिए सुनाया है, क्योंकि सीधे साधे गाने गाना बहुत आसान होता है, लेकिन मुश्किल वाले गाने गाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा ही गाना है इतनी बड़ी महफिल, और आशा भोसले जी ने इतनी बड़ी महफिल में अपनी आवाज़ ऐसी गुंजाई कि सब गुनगुना उठे इस गाने को। फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई।

0: आप सुन रहे हैं महक टू डिप्लार 88.5 एफएम पर अपना मनपसंद कार्यक्रम महक जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल 2:41 स्टूडियो की घड़ी में समय संदेशों का
1: Hi, I'm AJ to tell you about Cactus Imaging, a printer like no other, with large format commercial printing of the highest quality for billboards, banners, vehicle wraps, street furniture, retail displays and interior signage, building wraps and hoardings, fabric printing and much more. Yes, 2RRR sponsor, Cactus Imaging, a printer like no other.
2: For further inquiry, go to cactusimaging.com.au. Cactus Imaging, a printer like no other.
3: Celebrate World Environment Day this June by learning easy ways to save water at home and cut your water bills. Register for one of the free Sydney Water Community workshops to be held at Ryde Libraries. You'll discover simple, everyday habits to reduce water use and save money. Learn how Sydney Water's WaterFix programs can help you make your home or business more water efficient. Find out how the WaterFix residential service makes fixing leaks in your home affordable. Explore great deals and free upgrades for water efficient showerheads, taps and toilets. Phone Council on 9952 8222.
4: Major Gregory Keane of MI5 returns in a new exciting serial, Deadly Nightshade. Brought to you by Paul Gilbert, a proud personal supporter of 2RRR, every Thursday at 11:30 a.m. on 2RRR 88.5 FM.
0: संदेशों के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है महक 2RRR 88.5 FM पर आज आशा भोसले जी को श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में और हम जल्द ही आशा भोसले जी को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जारी रखेंगे लेकिन अभी समय है बात करने का दादा साहेब फाल्के जी का जिनका जन्म हुआ 30 अप्रैल 1870 को और उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जाना जाता है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनके नाम पर ही रखा गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड जन्म का नाम धुंधी राज गोविंद फाल्के चितपवन ब्राह्मण परिवार में गोविंद सादा शिव फाल्के और द्वारका बाई के घर पैदा हुए वो सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से ड्राइंग का एक साल का कोर्स किया महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा से ऑयल पेंटिंग और वाटर कलर्स का कोर्स किया 1890 में तभी एक फिल्म कैमरा खरीदा और फोटोग्राफी प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग का काम करने लगे 1892 में इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन अहमदाबाद में एक आइडियल थिएटर का मॉडल बनाकर गोल्ड मेडल जीता हाफ टोन ब्लॉक्स फोटोलिथियो और थ्री कलर सिरेमिक्स फोटोग्राफी सीखी 1893 में कला भवन में श्री फाल्के इंजीनियरिंग एंड फोटो प्रिंटिंग नाम से एक काम शुरू किया 1895 में गोधरा में प्रोफेशनल फोटोग्राफी का काम भी शुरू किया 1902 में गिरिजा कर्णिकर से शादी की गिरिजा करण डिकर से शादी की 1906 में लोनावला में फाल्के एंग्रेविंग प्रिंटिंग वर्क्स का एक और दफ्तर खोला 1908 में पुरुषोत्तम भावजी के साथ साझेदारी की प्रिंटिंग वर्क्स में लेकिन जल्द ही साझेदारी में अनबन के कारण उसे उन्हें छोड़ना पड़ा पहली बार अमेजिंग एनिमल्स फिल्म देखी बहुत प्रभावित हुए उसके बाद द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट देखी तो मन में आया क्यों ना मैं राम और कृष्ण पर फिल्म बनाऊं फिल्म कला को सीखने के लिए 10,000 रुपये जो उस समय बहुत बड़ी रकम होते थे 1910 में 1912 में उधार लेकर 1 फरवरी 1912 को लंदन के लिए रवाना हो गए। वॉल्टन स्टूडियोज में के सेसिल हेपवर्थ ने फाल्के को स्टूडियो के सभी डिपार्टमेंट्स में काम सीखने का मौका दिया। 50 पाउंड की रकम से विलियमसन कैमरा और कोडेक फिल्म खरीदी। 1 अप्रैल 1912 को भारत लौट आए। उसी दिन फाल्के फिल्म्स कंपनी खोली। मथुरा भवन बंगला दादर में फिल्म प्रोसेसिंग का काम करने की तैयारी भी की। 1 मिनट की फिल्म बनाई अंकुराची वाड़ी और दोस्तों को दिखाई। इस फिल्म में एक बीज से पौधा कैसे उगता था, उगता है, उसके बारे में दिखाया। दोस्तों ने फाल्के को लोन दे दिया। 18 मई 1912 भारत की पहली साइलेंट फिल्म पुंडलिक थिएटर में रिलीज की दादा साहेब फाल्के जी ने। 21 अप्रैल 1913 को राजा हरिश्चंद्र थिएटर में लगाई। ओलंपिक थिएटर में ये फिल्म जो रिलीज हुई बहुत बड़ी सफलता हुई इस फिल्म से उनको और फिल्म को। फिल्म में राजा हरिश्चंद्र महिला पात्र का अभिनय भी पुरुषों ने किया। फिल्म मोहिनी भस्मासुर पहली बार दुर्गाबाई कामत ने पार्वती और उसकी बेटी कमलाबाई गोखले ने मोहिनी के किरदार निभाए। 2 जनवरी 1914 ओलंपिक थिएटर बॉम्बे में यह फिल्म रिलीज हुई। 6 जून 1914 को तीसरी फिल्म सत्यवान सावित्री रिलीज हुई। देशभर से फिल्मों की कॉपी की मांग आने लगी। फाल्के कॉपी बनाने की मशीन लंदन से लेकर आए, लेकिन पैसे की कमी के कारण और उधार लेना पड़ा उन्हें 30,000 रुपये का। 1916 में पैसा जुटाने के लिए औंध, ग्वालियर, इंदौर, जाम, खंडी और मिराज राज्यों में फिल्म प्रदर्शन किए। 8,000 रुपये इकट्ठा हुए। बॉम्बे से नासिक तक का काम उन्होंने संभाला। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र को का नेगेटिव खो गया। फिल्म दोबारा शूट की गई सत्यावती राजा हरिश्चंद्र के नाम से। 3 अप्रैल 1917 आर्यन सिनेमा पूना में रिलीज हुई। लोकमान्य तिलक जी ने फाल्के की मदद के लिए अपील की। अपील सफल हुई और फाल्के जी ने लंका दहन फिल्म बनाई। 17 सितंबर 1917 को आर्यन सिनेमा पूना में रिलीज हुई। हाउ फिल्म्स आर मेड एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। 10 दिनों में 35,000 रुपये की टिकट सेल हुई। फाल्के जी ने सारे उधार चुका दिए। वामन श्रीधर आपटे, लक्ष्मण बलवंत फाटक, माया शंकर भट्ट, माधव जी जयसिंह और गोकुल दास दामोदर के साथ 1918 को उन्होंने हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म्स कंपनी बनाई। 1 जनवरी 1918 को फाल्के बने मैनेजिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर, बाकी के फाइनेंशियल पार्टनर। और कंपनी की पहली फिल्म थी श्री कृष्ण जन्म। बेटी मंदाकिनी जो 6 साल की थी उसने कृष्ण जी का रोल किया। 24 अगस्त 1918 को रिलीज हुई 3 लाख रुपए की कमाई की इस फिल्म ने उस समय 1918 में। अगली फिल्म कालिया मर्दन 3 मई 1919 को रिलीज हुई। कंपनी के साझेदार से अनबन हुई। कंपनी छोड़ बिना हिस्सा लिए काशी चले गए। बड़ा आत्म सम्मान था उनमें और अपने इज्जत का बहुत ध्यान था और किसी से वो नीचा नहीं देखना चाहते थे। तो कंपनी की हालत बिगड़ने लगी। फाल्के को वापस आने के लिए आग्रह किया गया। फाल्के जी ने पत्र लिखकर जवाब दिया, सिनेमा उद्योग के लिए मैं मर चुका हूँ। कंपनी की हालत और बिगड़ती गई। मैनेजिंग पार्टनर वामन आपटे ने आर्यन सिनेमा के पापू साहब पाठक के साथ फाल्के से फिर बात की। प्रोडक्शन चीफ और टेक्निकल एडवाइजर के तौर पर 1,000 रुपये महीना की तनख्वाह पर फाल्के जी राजी हो गए। फिल्म बनाई संत नामदेव। फिर अनबन हुई। फाल्के जी ने फिर कंपनी छोड़ दी। माया शंकर भट्ट और बामन आपटे के साथ मिलकर सेतु बंधन बनाई। इसी दौर में अरदेशीर ईरानी ने भारत की पहली बोलती फिल्म बनाई आलम आरा। फाल्के जी को सेतु बंधन में साउंड डालने की सलाह दी गई। फाल्के ने सेतु बंधन को डब किया लेकिन फिल्म को अधिक सफलता नहीं मिली। कोल्हापुर के राजा राजा राम तीसरे तृतीय ने फाल्के को गंगा वत्सन वतरन माफ कीजिए गंगा वतरन बनाने की पेशकश की। फिल्म 2.5 लाख रुपए में बनी। 6 अगस्त 1937 को रॉयल ओपरा हाउस बॉम्बे में रिलीज हुई। उसके बाद फाल्के जी रिटायर हो गए और नासिक में रहने लगे जहां 16 फरवरी 1944 को उनका देहांत हो गया। 1971 में 1971 में उनके सम्मान में 20 पैसे की एक डाक टिकट निकाली गई। 1969 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहेब फाल्के अवार्ड की स्थापना की जो आज तक जारी है। यदि कुछ बातें दादा साहेब फाल्के जी के बारे में और उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी और आइए चले अगले गाने की ओर। अगला गाना जो है वो हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल इसलिए है कि ओपी नैयर साहब ने आशा भोसले जी को अपने साथ लिया और अपनी सारी फिल्मों में उनके गाने दिए उनको गाने दिए और सभी के सभी गाने बहुत पॉपुलर हुए। फिल्म नया दौर कौन भूल सकता है और इतने पॉपुलर हुए नया दौर के गाने उड़े जब जब जुल्फें तेरी और मांग के साथ तुम्हारा जो है ये गाना और इसको पसंद किया है लता ने।

और फिर ओपी नैयर साहब के ही संगीत में उन आशा भोंसले जी का गाया हुआ गाना कौन भूल सकता है, और फिल्म थी कश्मीर की कली।

0: बहनों भाइयों, अगर आपको गीतमाला की छाओ में के वॉल्यूम्स पसंद आ रहे हैं तो अपने सभी दोस्तों से भी कहिए खरीदने के लिए। हाँ, मगर वो
1: जी हम भी यही कहते हैं कि अगर आपको महक कार्यक्रम पसंद आता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए ताकि वो भी आपकी पसंद को अपनी पसंद बना सकें। ओपी नैयर साहब के संगीत में मेरे सनम वक्त फिल्म बनी, माफ़ कीजिए, वक्त फिल्म बनी, और वक्त फिल्म के यूँ तो गाने बहुत अच्छे थे लेकिन आशा भोसले जी की आवाज़ में ये गाना एक तरह से आइकॉनिक यादगार गाना बन गया।

और आशा भोसले जी को श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में ये गाना तो सुनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये है फिल्म मेरे सनम का गाना, और आशा पारेख जी थी इस फिल्म में, और फिल्म तो सुपर हिट हुई ही, लेकिन सुपर हिट हुआ आशा भोसले जी का ये गाना मेरे सनम फिल्म से।

0: कनाडा के ओंटेरियो स्टेट में वुडस्टॉक शहर में फुटपाथ पर चल रहे एक सिख बुजुर्ग को एक अंग्रेजी बुजुर्ग युवक ने अपशब्द कहे और नस्ली टिप्पणियां की और कहा, मेरे देश से निकल जाओ। कथित तौर पर युवक ने बिना किसी उकसाव के ऐसा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कहा, हमारे समुदाय में घृणा की कोई जगह नहीं है। वुडस्टॉक पुलिस सर्विस समुदाय के सभी सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व सिख संगठन ने घटना के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की और हमले को अस्वीकार्य बताया। पंजाब किंग्स आईपीएल पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर हैं। इस पर एक जश्न ऑर्गेनाइज किया जिसमें टीम की मालकिन प्रीति जिंटा को एक व्यक्ति ने असली ट्रॉफी बताया। तो प्रीति जिंटा ने कहा, महिलाओं के लिए ऐसे शब्द ठीक नहीं होते। कोई भी महिला ट्रॉफी नहीं बनना चाहती। ट्रॉफी किसी की होती है, लेकिन महिलाएं किसी की ट्रॉफी नहीं होती। ट्रॉफी को शोकेस में सजाया जाता है, लेकिन एक महिला की जगह आपकी जिंदगी और दिल में होती है। प्रीति जिंटा को आने वाली फिल्म में आप देख सकेंगे लाहौर 1947 सनी देओल के साथ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 12 पॉइंट हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के 12 पॉइंट हैं और राजस्थान रॉयल्स के 12 पॉइंट हैं और बाकी सबके बहुत ही कम हैं। इंडियन एक्सप्रेस 30 अप्रैल को समाचार आया कि द टुनाइट शो विद जिम फैलन में आए दिलजीत दोसांझ, जो आप जानते हैं पंजाब की के बहुत ही प्रचलित गाने वाले हैं और एक्टर हैं। अन्य बातचीत के साथ दिलजीत दोसांझ ने 1914 को के कोमागारा मारू घटना का विचार घटना पर अपने विचार रखे। घटना में आपको याद दिला दूं, कोमागारा मारू समुद्री जहाज से उस समय के रेसिस्ट इमिग्रेशन लॉज के कारण 376 भारतीयों को कनाडा में एंट्री नहीं दी गई। इनमें 340 सिख थे और 24 मुस्लिम और 12 हिंदू थे, जिनको कि ये जिन पर कि ये कहर बरपा। उस समय 19 जुलाई को 100 से अधिक पुलिस वाले और इमिग्रेशन अफसर जहाज पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन पैसेंजर्स ने लोहे के पाइप और कोयला फेंक कर उन्हें रोका। अंततः जहाज को वापस भारत भेज दिया गया। वैंकूवर के बीसी प्लेस स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ का ये शो हो रहा था, जिसमें 55,000 दर्शक थे दिलजीत दोसांझ के इस शो में। वहां और जिमी फैलन शो में, दोनों में दिलजीत दोसांझ ने कहा, जब हमारे लोग पहली बार कनाडा आए तो हमें नहीं आने दिया गया। ये स्टेडियम उस जगह से केवल 2 किलोमीटर दूर है। ये बड़ी बात है, 55,000 लोग एक स्टेडियम में और सभी के सभी भारतीय। तुमने हमें आने नहीं दिया, अब हम यहाँ हैं, उन्होंने कहा। और नेपाल एयरलाइंस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल किए गए नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। बवाल खड़ा हो गया। तुरंत ही नेपाल एयरलाइंस ने गलती मानी और पोस्ट को हटा दिया। हम अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर हाल ही में साझा किए थे नेटवर्क मैप और उसमें गलती की गई, उसके लिए हम ईमानदारी से माफी मांगते हैं। इस मैप में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी गंभीर मानचित्र संबंधी गलतियां थीं। ये नेपाल या नेपाल एयरलाइंस के आधिकारिक रुख को नहीं दिखाता। हम क्षेत्र में अपने पड़ोसी देशों के साथ, मित्रों के साथ मजबूत संबंधों को बहुत महत्व देते हैं और इस पोस्ट से हुई किसी को ठेस के लिए खेद जताते हैं। रांची का रहने वाला 7 साल का इशांक सिंह पॉक स्ट्रेट, जो कि श्रीलंका और भारत के बीच जो पानी समुद्र का पानी है उसे पॉक स्ट्रेट कहते हैं, वो उसे तैरने वाला सबसे छोटी उम्र का व्यक्ति बना है। उसने 29 किलोमीटर तय किया तलाई मन्नार श्रीलंका से धनुषकोडी भारत तक की दूरी को 9 घंटे 50 मिनट में 30 अप्रैल 2026 के दिन। तीसरी कक्षा के इस विद्यार्थी ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए समुद्र की बड़ी लहरों का मुकाबला किया और साथ ही उस पॉक स्ट्रेट में शार्क्स भी हैं तो उनका भी मुकाबला किया एक तरह से, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम ने इस रिकॉर्ड को स्वीकार किया है और रिकॉर्ड है यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पॉक स्ट्रेट स्विमर। स्ट्रेट में मगरमच्छों का भी भारी खतरा है जिसका हिम्मत और साहस से मुकाबला किया इशांक सिंह ने। उसकी इस साहसिक उपलब्धि के लिए रांची का नाम ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन हुआ है। बीबीसी हिंदी 3 मई को समाचार आया, भारत की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ने भारत के मोबाइल फोन्स के जरिए सेवा लॉन्च की है और ये सेवा है जनता तक डिजास्टर वार्निंग पहुंचाने की। मोबाइल फोन्स पर संदेश के अलावा सायरन की आवाज भी सुनाई देगी। संदेश अंग्रेजी हिंदी और स्थानीय भाषा में होंगे और जान और माल की सुरक्षा के लिए ये सेवा बहुत ही उपयोगी रहेगी, ऐसा कहा केंद्रीय कम्युनिकेशंस मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और दिलजीत दोसांझ की कॉन्सर्ट जो हुई कैलगरी में, उसमें उनके विरोध में आए खालिस्तानी समर्थकों को संबोधित करते हुए दिलजीत दोसांझ ने अपनी जांग पर थप्पी लगाते हुए कहा, आओ सामने जिसने आना है, तुम लोगों ने पंजाब के लिए किया ही क्या है, मैंने पंजाब के लिए धन और अपनी सेवा दी है, इनको उठाकर कॉन्सर्ट से बाहर फेंको, ऐसा कहा दिलजीत दोसांझ ने, मैं मरने से नहीं डरता, आओ सामने। इतने क्या कहें, वो काफी समझदार तो हैं ही लेकिन साथ में दलेर भी हैं और शायद उनका नाम दिलजीत की जगह दलेर दोसांझ होना चाहिए, लेकिन मजाक की बात अलग, उसने बहुत अच्छी बात कही दिलजीत दोसांझ ने। और बहुत अच्छी बात है हमारे इन संदेशों में, क्योंकि अब 3:27 हुए हैं।
1: Where else do you get great dining with everyday specials at the Northride RSL? That's where. With the Riverviews Bar and Dining, the Marble Bar and Cafe, the Green Bar, the Downstairs Bar, and the House of Tong. And not forgetting the free live entertainment every Friday and Saturday nights. Plus, you can catch top starring acts in the auditorium. It's the Northride RSL, where members enjoy regular specials, giveaways, and win great prizes. Station sponsor, the Northride RSL on Pittwater Road. More than a club, it's your community.
2: Salvation Army's Most Worthy Red Shield Appeal will be taking place this year between Friday the 1st of May and Monday the 30th of June. For more information for the Salvation Army Red Shield Appeal, email ride@salvationarmy.org.au.
3: If mainstream jazz, with an emphasis on contemporary versions of the Great American Songbook, is your cup of coffee or tea, then take a sip or three of Midday Jazz from 12 till 2 on Thursdays. That's Midday Jazz with me, Rob Scott, every Thursday right here on Sydney's 2RRR FM 88.5, your local sound.
4: Think Vivid Sydney's One Big Light Show? It's time to think again. They've got musicians performing at legendary landmarks, creative visionaries and thought leaders tackling our biggest questions, and chefs cooking up unbelievable flavors. Go beyond at Vivid Sydney from May 22nd to June 13th. Plan your trip today at vividsydney.com.
0: संदेशों के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है. मैं एक 2RRR 88.5 FM पर अपने मनपसंद कार्यक्रम महक में. डुएट्स में आशा भोसले जी ने बहुत सफलता पाई और एक के बाद एक जो उनके डुएट्स आए उनकी वजह से उनका नाम और भी चमका, जैसे कि फिल्म हम दोनों का ये डुएट.

सर दूसरा डुएट गाना जो आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ, माफ कीजिए ये गाने थोड़े से कम सुना रहा हूँ आपको, लेकिन क्या करूँ समय बहुत कम है। आशा पारेख जी के माफ कीजिए आशा भोसले जी के गाने बहुत हैं, तो आपको एक झलक ज़रूर सुनाना चाहता हूँ उनके सभी गानों की, लेकिन फिर भी नहीं पूरे होंगे, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जो गाने उन्होंने गाए हैं उनमें जिसमें जिस तरह से उन्होंने अलग अलग चीज़ें पेश की हैं वो गानों की झलक आप तक ज़रूर पहुँचे। फिल्म है काला पानी, देव आनंद साहब और मधुवाला, और आवाज़ आशा भोसले।

और फिल्म काला पानी के बाद बारी है इस गाने की और ये है किशोर कुमार जी की बहुत ही एक सफल फिल्म चलती का नाम गाड़ी और मधुबाला जी थी इसमें एक बार फिर किशोर जी तो थे ही और आवाज किशोर जी और आशा जी

और कौन भूल सकता है आशा पारेख जी का दमदार गाना, और ये दमदार गाना है उनके एक बहुत ही फिल्म अच्छी भी थी और सफल भी थी और यादगार भी थी, काला पानी से।

और कितने आइकॉनिक गाने गाए उन्होंने, उनमें से एक शायद हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और ये 1970 में जो हिप्पी मूवमेंट चली थी उस पर बनी थी फिल्म हरे राम हरे कृष्णा, और इसमें ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि आशा भोसले जी पहुंच गई उन बुलंदियों पर जहां से किसी को भी वापस नहीं बुलाया जा सकता।

और बातें हमारी कर्म जन्मभूमि की कुछ इधर की कुछ उधर की। दिल्ली यूपी बिहार राजस्थान में लू की लहर चल रही है आजकल। तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। साइबर क्राइम से कोई नहीं बचा है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या आम हो या स्टार हो। अक्षय कुमार की बेटी से, जो अभिनेता हैं आप जानते होंगे, उनकी बेटी नितारा को भी ये झेलना पड़ा। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान उसे उसकी न्यूड फोटो भेजने का प्रस्ताव मिला। नितारा ने समझदारी दिखाई, खेलना बंद किया, अपनी मां को बताया और अक्षय कुमार ने साइबर क्राइम सेल को सूचित किया और वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया। मथुरा दिल्ली में 140 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। भारतीय रेल का ऐसा जंक्शन है ये मथुरा कि जहां से आप भारत के चारों दिशाओं में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। जी हाँ, सही कहा मैंने। और आप जहां भी जाना चाहें भारत में, आप मथुरा जंक्शन से जा सकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट और कहीं के लिए भी यहां से मथुरा से ट्रेन पकड़ सकते हैं। और ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के साथ न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोरान ममदानी की मुलाकात हुई। ज़ोरान ममदानी चाहते हैं कि ब्रिटेन को कोहिनूर हीरा भारत को वापस देने के लिए कहा जाए। अब होगा या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन हम जानते हैं कि अगला गाना जो आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ, आर डी बर्मन साहब के संगीत में है ये, और ज़ाहिर आशा जी की आवाज़ है, और यादों की बारात फिल्म का नाम, और यादों की बारात ही है ये आवाज़ इस गाने में।

1970 के दशक में विस्फोट हुआ आशा जी के कैबरे गानों का, और विस्फोट हुआ पर्दे पर कैबरे का, जिसको बड़ी शान से निभाया किसने आप जानते ही हैं, हेलन जी ने, कारवां, जोशीले, कटी पतंग और अनामिका, खेल खेल में कुछ और फिल्में हैं जिनमें कि उन्होंने कैबरे गाने गाए, और राजा जानी के भूपेंद्र जी के साथ सड़कों पर नापने वाले भूल, कैसे भूल सकते हैं सड़कों को नापना जब अंधेरा होता है, और गाने में खतरा भी है, चिंता भी है और साहस भी है, सब कुछ एक साथ है। और आपने सुना ही हरे राम हरे कृष्ण का गाना दम मारो दम, उसने तो एक ट्रेंड ही चला दिया था, आइकॉन बन गया था, और कौन भूल सकता है कवाली हम किसी से कम नहीं की, ये नहीं समझो कि हम में दम नहीं, दम नहीं, बहुत ही प्यारा गाना था। और उनके गाने इतने हैं कि जैसे मैंने कहा एक कार्यक्रम में तो पूरे हो ही नहीं सकते, लेकिन कोशिश की है कि उनके अलग अलग रंग आपको दिखा सकूं इन गानों में। और बातें हमारी कर्मभूमि की, कुमन जई लिटिल बेबी एलिस स्प्रिंग्स नॉर्दर्न टेरिटरी में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह रही थी, और 5 साल की उम्र थी उसकी, उसका अपहरण हुआ और उसकी हत्या हुई। पुलिस अभी और इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन कथित तौर पर आरोपी जेफरसन लुइस को गिरफ्तार करके उस पर केस, मर्डर का आरोप लगा दिया गया है। पिछले 1 साल से ज्यादा समय के लिए लिबरल पार्टी को वन नेशन पार्टी पूरा मुकाबला ही नहीं दे रही, कई तरह से उसके आगे भी बढ़ गई है, जैसे कि प्रेफर्ड पार्टी के तौर पर। बीते सप्ताह लिबरल पार्टी ने विक्टोरिया के बाय इलेक्शन में नेपियन की सीट जीतकर वन नेशन की इस पकड़ को थोड़ा कम किया है। न्यू साउथ वेल्स डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन सैली डाउनिंग सीनियर काउंसलर इंक्वायरी का सामना कर रही है केस में कि उसने 2GP पर DPP ऑफिस के मीडिया मैनेजर का एक जज और केस के बारे में बयान जो हुआ उसमें शायद उस पर छानबीन ये चल रही है कि उसने DPP ऑफिसर ने उसकी मंजूरी दी या नहीं दी, हमें नहीं मालूम, लेकिन केस चल रहा है। बर्नी कॉलिंस बेटमैन बे का ऑयस्टर फार्मर है, यानी ऑयस्टर की फार्मिंग करता है। आम ऑयस्टर 40 से 80 ग्राम होता है, यानी 60 ग्राम का होता है। बर्नी का एक ऑयस्टर जिल 3 किलोग्राम से ज़्यादा का है, और नरूमा ऑयस्टर फेस्टिवल चैम्पियनशिप में ऑस्ट्रेलियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका सबसे भारी ऑयस्टर का नाम दिया गया है, और इस ऑयस्टर की उम्र थी 10 साल। जी हाँ, और हम इतनी देर तो यह कार्यक्रम नहीं कर सकते, केवल 2 घंटे का कार्यक्रम है हर इतवार, और आज भी ऐसा ही है। और आशा भोसले जी के इस गाने की झलक सुनाए बिना तो कार्यक्रम पूरा होगा ही नहीं।

0: फिर क्या हुआ?
1: अगले सप्ताह जिन कलाकारों के जन्मदिन हैं उनमें शामिल हैं अरुणा ईरानी, रीमो फर्नांडिस डांसर रहे हैं, अचला सचदेव बहुत ही एक पावरफुल एक्ट्रेस, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो एक महान लेखक रहे हैं, और जो मशहूर लोग हैं जिनका जन्मदिन है अगले सप्ताह उनमें शामिल हैं रविंद्रनाथ टैगोर, भारत के पहले लिटरेचर नोबेल प्राइज़ जीतने वाले, महाराणा प्रताप जी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्ञानी जैल सिंह जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, वी के कृष्ण मेनन जो भारत के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, गुरु अमरदास जो तीसरे गुरु रहे हैं सिखों के, और हुशियार सिंह दहिया जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

आशा जी की आवाज का जादू मस्ती और हंसी मजाक के गानों में भी खूब छाया, जैसे किस्मत फिल्म के कजरा मोहब्बत वाला गाने में और रफू चक्कर फिल्म में चुक चुक चुक जो पर्दे पर निभाया था पेंटल साहब ने। जी हाँ, और बहुत ही एक बेहतरीन रोल निभाया था पेंटल साहब ने आशा भोसले जी के इस गाने में, और चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक, और बहुत ही प्यारा गाना था। और आशा जी की आवाज़ का जादू जो है उसे समझने के लिए मेरे ख्याल से उनके सफ़र को समझना ज़रूरी है। आज मैंने यही कोशिश की है उनके शुरू से लेकर अंत तक के गानों के बारे में कुछ जानकारी आपको दूं और कुछ गाने आपके लिए पेश करूं। उनका सफ़र शुरू हुआ 1940 से और समाप्त हुआ उनका सफ़र 12 अप्रैल 2026 को। और कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने को आ गया है और आपसे इजाज़त लेने का समय आ गया है। कार्यक्रम महक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें। और खयाम साहब ने उनको जो मौका दिया फिल्म उमराव जान में, उसका बहुत फ़ायदा उठाया और पूरी जस्टिस की उसके साथ आशा पारिक जी ने, और उन इन इस फिल्म में जुस्तजू जिसकी थी बेमिसाल है, और बेमिसाल है इन आँखों की मस्ती। तो ये अंत में आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ खयाम साहब की बेहतरीन फिल्म उमराव जान से आशा भोसले जी की आवाज़ का जादू महक 2RRR 88.5 FM पर। नमस्कार।